0: एलिसा ऐप के साथ AI पावर्ड पर्सनल म्यूजिक टीचर फ्रॉम सारेगामा।
1: लेडीज एंड जेंटलमैन, यू आर नॉट रेडी फॉर दिस।